0: Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, आप हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को भी सुन सकते हैं ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स और रेडियो प्लेयर और नेशन प्लेयर ऐप पर।
0: सनराइज हिट्स, द यूके's smoothest Asian hits.

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर थे।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
2: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
1: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिए, आप हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को भी सुन सकते हैं ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स और रेडियो प्लेयर और नेशन प्लेयर ऐप पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स, यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, आप हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को भी सुन सकते हैं ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स और रेडियो प्लेयर और नेशन प्लेयर ऐप पर।
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits, UK के smoothest Asian hits को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिए, आप हमारे sister station Sunrise Radio को भी सुन सकते हैं on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, दुनिया भर में via sunriseradio.com, free Sunrise Radio app पर या फिर अपने home smart speakers और radio player और nation player app पर. Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: ब्रेकफास्ट ऑन सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैंने ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा, मैनू याद नहीं। पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: artist of the week with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
1: Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज सनराइज हिट्स, द UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706-0915. That's 0208 706-0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 0208574777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706-0915. That's 0208 706-0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706-0915. That's 0208 706-0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए। UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, Sunrise Hits सेल्स टीम।

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Pepe's sizzling song of the hour. Order a Pepe's this month and you could win tech vouchers on the spot. Plus, you're automatically entered into a grand prize gaming bundle draw. Flame grill flavor with a side of winning. Pepe's. T's and C's apply. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स, यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, आप हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को भी सुन सकते हैं ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स और रेडियो प्लेयर और नेशन प्लेयर ऐप पर।
0: Sunrise Hits.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: ये जो चिलमन है

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 0208574777 पर कॉल कीजिए.
0: दिस इज द यूके's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Find your flavour at Pepe's. With over 260 stores nationwide, we're closer than you think. Fresh flame-grilled chicken with a choice of six delicious marinades. Simply Pepe-licious. This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020 8574 7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

हॉटेस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: दिस इज द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स।

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो पॉप चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो पॉप, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's sizzling song of the hour. Find your flavor at Pepe's. With over 260 stores nationwide, we're closer than you think. Fresh flame-grilled chicken with a choice of six delicious marinades. Simply Pepe-licious. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: सनराइज हिट्स, यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, आप हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को भी सुन सकते हैं ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स और रेडियो प्लेयर और नेशन प्लेयर ऐप पर।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द UK's smoothest Asian hits.

0: Sunrise Hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Attention wedding vendors, venues, caterers, DJs, photographers, decorators and bridal stores. Shadi Hub is the UK's new home for South Asian weddings and we want your business on it. List your services free for 30 days. After your trial, claim half price with code SUNRISE. Visit shadihub.co.uk today. Real couples, real inquiries and no commission on your bookings. Join the vendors partnering with Shadi Hub across the UK. Shadi Hub, where couples find you first.
4: Sunrise Hits, UK ke smoothest Asian hits ko sunne ke liye shukriya. Yaad rakhiye, aap hamare sister station Sunrise Radio ko bhi sun sakte hain on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, duniya bhar mein via sunriseradio.com, free Sunrise Radio app par ya phir apne home smart speakers or radio player or nation player app par.
3: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आगमन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
3: Advertise on Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Sunrise Hits, UK के smoothest Asian hits को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिए, आप हमारे sister station Sunrise Radio को भी सुन सकते हैं on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, दुनिया भर में via sunriseradio.com, free Sunrise Radio app पर या फिर अपने home smart speakers और radio player और nation player app पर. Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए. UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 020-8574-7777 पर call कीजिए.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स दिस इज सनराइज हिट्स

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavour. Hira, king in quality, king in taste.
2: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए. ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: सनराइज हिट्स।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।